ये खबरें आप NHK World Japan की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। जापान के मयारी तवील मुद्दती हुकूमती बांड पर मुनाफा तकरीबन 30 सालों की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। सरमायाकार मुल्क की मालियाती सेहत पर तशवीश के बायस बांड फरोख्त कर रहे हैं। मजकूरा 10 साल बांड का मुनाफा मंगल के रोज 3.0% तक पहुंच गया। ब्रोकरेज कंपनी जापान बांड ट्रेडिंग का कहना है कि ये वो सतह है जो अक्टूबर 1996 के बाद से नहीं देखी गई। बैंक ऑफ जापान की जानिब से शरह सूद में वक्त से पहले इजाफा होने के बारे में बढ़ती हुई कयास आराइयां और ये अम्र फरोख्त का दबाव बढ़ा रहा है कि अमरीकी खजाना के मुनाफों में इजाफा होगा। मस्नूई जहानत के शोबे में तरक्की के दौरान दुनिया भर में बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र जापान की बरकी मसनूआत तैयार करने वाली बड़ी कंपनियां अपने डेटा सेंटर के कारोबार को वसत देने के लिए बैरून मुल्क कंपनियों को खरीद रही हैं। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक अमरीका में कायम तवानाई से मुतालिक कंपनी को खरीदने के लिए तकरीबन 220 अरब येन यानी तकरीबन 1.4 अरब डॉलर अदा करने का इरादा रखती है। ये खरीदारी ऐसे वक्त की जा रही है जब इंजीनियर्स डेटा सेंटर में बिजली की खपत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का कहना है कि अमरीकी कंपनी का बिजली की खपत की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तैयार करदा सॉफ्टवेयर और जापानी कंपनी की बिजली वसूल करने और तकसीम करने के आलात से मुतालिक महारत मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क उसके डेटा सेंटर के कारोबार को फरोग देने में मदद देंगे। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एक एग्जीक्यूटिव ने बिजली के बाकिफायत इस्तेमाल की बढ़ती हुई ज़रूरत की तरफ इशारा करते हुए मजीद कहा कि डेटा सेंटर्स कारखानों और इमारतों में इस टेक्नोलॉजी की तलब बढ़ने की तवक्को है। बरकी मसनूआत बनाने वाली कंपनी TDK डेटा सेंटर्स के लिए कूलिंग आलात की फरोख्त बढ़ाने की गर्ज से अमरीकी मसनूआत साज कंपनी को खरीदने के लिए तैयार है।